0: E vamos para a Índia. Estamos a ouvir o tema Na Na Na Eyakia Cornelogot O da grande Emlata.
1: Na Na Na Na Ye kya Cornelogot O? Tum to had se guzarne lage ho. Ye mujhe kahan le aaye ho? कहां का वादा करके तुम कहां ले आए हर जाई तुम्हें तो दिल लगी सूझी मेरी तो जान
0: द बंदा सुनारा बॉम्बई 405 माइल्स 405 माइल्स

सितारों की बारात हो, सजी सजी रात हो, फूलों की सेज हो, तब ऐसी कोई बात हो, है ना, है ना।

क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? मेरा प्यार तुम्हारे लिए है मगर अभी नहीं। उल्फत का जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। आग को तो लगने दो,

वाला तुम बड़े जिद्दी हो, बढ़े जाते हो तुम आगे, बदन शोला सा जलता है, तुम्हारा खेल ठहर और हमारा दम निकलता है।

0: E vamos para a Índia. Estamos a ouvir o tema Na Na Na Eyakia Cornelogot O da grande Mlata.
1: Na Na Na Na, o que é o Cornelogot? तुम तो हद से गुजरने लगे हो ये मुझे कहां ले आए हो कहां का वादा करके तुम कहां ले आए हर जाई तुम्हें तो दिल लगी सूझी मेरी तो जान
0: द बंदर सुनारा बॉम्बई 405 माइल्स 405 माइल्स

तो तारों की बारात हो, सजी सजी रात हो, फूलों की सेज हो, तब ऐसी कोई बात हो, है ना, है ना।

छोड़ो ना। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? मेरा प्यार तुम्हारे लिए है मगर अभी नहीं। उल्फत का जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। आग को तो लगने दो,

अल्लाह, तुम बड़े जिद्दी हो, बढ़े जाते हो तुम आगे, बदन शोला से जलता है, तुम्हारा खेल है और हमारा दम निकलता है, छोड़ो, जबरदस्ती के रिश्ते ना जोड़ो,